0: सपत दीप सपत सागरा नवखंड चार वेद दस अष्ट पुराणा
1: नवखंड ते विश्राम
0: सपत दीप सपत सागरा नवखंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सबना विच तू वरतदा हर सबना भाणा सब तुझै ध्याव है जी जंत हर सारग पाणा जो गुरमुख हर आराध दे तिन हों कुरबाणा तू आपे आप वरतदा कर चोज विडाणा सलोक महला तीजा कलो मजासनी
1: कलो मसाजनी
0: क्या सदाई है कलो

ना डोलई गुर कै पाए सुभाए गुर वेण सहज ना आवई लोभ मैल ना विच हो जाए खेन पल हर नाम मन वसै सब अठ सर तीरथ नहाए सच्चे मैल ना लगई मल लागै दूजे पाए धोती मूल ना उतरै जे अठ सठ तीरथ नहाए मनमुख कर

मन जस माय मन इच्छे जो मन जो इच्छे सो लहै सच्चै शब्द सुभाय अमृत नाम सद पुंचिय गोर मुख कार कमाय विण मनै जे होरी नाल रुजना विण मनै जे होरी नाल रुजना विण मनै जे होरी नाल रुजना जासी जन्म गवाय मन मुखी मन हठ हारिया कूड़ कुसत कमाय गुर प्रसादी मन जिणै हर सेती लेवलाय नानक गुरमुख सच कमावै मन मुख आवै जाय पौड़ी हर के संत सुनो जन भाई हर सतगुर की एक साखी जिस धुर भाग होवै मुख मस्तक तिन जन लै हिरदै राखी हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुर बचनी सहजे चाखी तह भया प्रगास मिटिया अंधियारा जो सूरज रैन किराखी अदिष्ट अगोचर अलख निरंजन सो देखिया गुरमुख आखी श्लोक महला तीजा सतगुर सेवे अपना सो सिर लेखै लाय विचो आप गुवाए कै रहन सच लिव लाय सतगुर जिनी ना सेवे।

0: पौड़ी
1: डुम पौड़ी
0: कसतूरी कै भोलड़ गंदे गंदे डुम पयास पौड़ी सो ऐसा हर नाम ते आइए मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए।

0: गुरमुख सच समाव है सच नाम उरतार पौड़ी हर जल थल महियल भरपूर दूजा नाहे कोए।
1: हां जी भरपूर पाठ आया ते कई बारी जिन्होंने संथ्या नहीं की घट की भरपूर पाठ कर जाते ने ये कदे भी भरपूर नहीं करना बाद विच पप्पे दा ही उचारण शुद्ध रखना भरपूर जी।
0: हर आप बह करे न्याओ कूड़ियार सब मार कडोए सच्यारा दे वड्याई
2: कडोए थोड़ा टड्डा
0: हर आप बहे हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए
2: कुड़ियार ग्लैंकड़े भी सही उच्चारण करो
0: हर हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए सच्यारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए सब हर की करहो उस तत।

0: सुहागणी मेली मेलन हार पौड़ी हार तेरी सब करह उस तत जिन फाथे काढ़िया हर तुदनो करह सब नमस्कार जिन पापै ते राखिया।
1: नमस्कार जेड़ा शब्द है ए मम्मे ते अधिक ला के बोलिया जावे ज्यादा शुद्ध हुंदा नमस्कार जिमे नमस्तम इस तरह ये शब्द दी बनकर है कार शब्द नाल संयोजक है ते कोशिश करो नमस्कार जी
0: हर तुदनो करह।

0: गुणी मिटाया, सब औगण गुणी मिटाया, गुर आपे बखसन हार पौड़ी, हर की भगता प्रतीत हर सब किछ जान, हर की भगता प्रतीत हर सब किछ जानदा, हर जेवड नाही कोई, हर जेवड नाही कोई जान,
1: कोई ते विश्राम ठीक
0: है, हर जेवड नाही कोई जान।

अलख प्रभ लाखिया सलोक महला तीजा जियो पिंड सब तिसका सब सह दे आधार नानक गुरमुख सेविया सदा सदा दातार हौ बलिहारी तिन को जिन त्याया हर निरंकार ओना के मुख सद उजले ओना नो सब जगत करे नमस्कार। महला तीजा सतगुर मिलया उलटी भई नव निध खरचो खरचियो खाओ सतगुर मिलया उलटी भई नव निध खरचियो खाओ अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिरन निज घर वसै निज थाए अनहद धुनी सद बज दे उन मन हर लिवलाए नानक हर भगत तिना कै मन वसै जिन मस्तक लिखिया तुर पाए पौड़ी हों ढाडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया

0: इतनाक ना जाना
1: इतनाक
0: इतनाक ना जाना है
2: इनू होर सौखा कर लीए इतना को अपा कहने इन्ना को आम बोली विच कहने इन्ना को वो शब्द है इतना को एदा मतलब है
0: कठे बोलना
2: बोलना कठा ही है इतना को एदा बोलना
0: जननी जानत स्वत बड़ा होत है इतना को ना जाना है जे दिन दिन अवध घटत है।

राव सास तह न प्रवेशं माया मोह तब बिसर गया जा तजियले संसारं आज मेरा मन प्रगट भया है।

0: गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लेव लागा मृतक पिंड पद मदना एहनस एक अज्ञान सो नागा।
1: ना वखरा ही करना लिखिया कठाई है मृतक पिंड पद माद ना वखरा
2: जिस तरह पहला एक सुआन कह घर गा बनाया सी ना हुण आया पहरिया कह घर गा बना पहला आपां पहरिया ली बाणी पढ़ के आया ना पहला पहरा रहण कह बन जा रहा मित्र उह चाल आ उहदी उस चाल नाल हुण शब्द यह पढ़िया जा रहा है ध्यान देना यह भी उस तर्ज कह लईए उह घर कह लईए जी
0: मृतक पिंड पद मद ना एहनस एक अज्ञान सो नागा
1: विश्राम एहनस ते आ जाण
0: मृतक पिंड पद मद ना एहनस एक अज्ञान सो नागा मृतक पिंड पद मद ना एहनस एक

मंडल आवगत बाण छोड़ मृत मंडल तौ पाछे पशुताना निकुटी देख देख तुन उपजै निकुटी निकुटी देह देख तुन उपजै निकुटी देह देख तुन उपजै मान करत नहीं बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन लोचन कछु ना सूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कछु ना सूझै थाका तेज उड्या मन पंखी घर आंगन ना सुखाई बेणी कहै सुनहो रे भगतहो जन्म मुरन मरन मुकत किन पाई बेणी कहै सुनहो रे भगतहो मरन मुकत किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक जाल तरंग जैसा।

0: आओ, तुम जो नायक अच्छा हो, अंतरजामी प्रभ ते जन जा निजै, जन ते स्वामी शरीर आराध, मोह कौ विचार देहू, रविदास सम दल समझावै को। राग माज चौप दे घर पहला महला चौथा।
1: इत्थे हुण राग श्री राग दी जो पहला राग है कत्तियां रागां दे विच्चों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पहला प्रथम राग है। इस राग दी श्री राग दी संपूर्णता होई है ते अगे राग माज प्रारंभ होण जा रहा है। इत्थे जरूरी एक बेनती करदे आं, हजूर दी जिन्नी बाणी है जैजा बंती राग तक सच्चे पातशाह जी ने ज्यादातर रागां दे विच उचारण कीती है। काव रूप बाणी सच्चे पातशाह जी ने उचारण कीती है। जदों 22-12 दी गल आएगी उहदे विच फिर 9 धुनियां दी वी गल आएगी। जिवें आसा की वार दा कीर्तन असीं करदे आ तां उत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी ने उपर धुन वी लिखी होई है। सो अगे उह धुनाउणगीआं तां नाल दी नाल तुहानूं पता लगदा जावेगा। सो इस करके कोशिश यह करनी चाहीदी है वी जदों वी गुरबाणी दा कीर्तन करना है तां रागां दे विच शब्द जरूर गायन करने चाहीदे ने। राग विद्या सानूं जरूर प्राप्त करनी चाहीदी है। जिवें पहला श्री राग आया सी ओ रात दे गाउण वाला राग है। जिवें शाम नूं 6 बजे तो लैके 9 बजे तक वाला जिहड़ा पहर आउंदा है उदों श्री राग दे शब्दां दा कीर्तन कीता जा सकदा है। हुण जिहड़ा राग माझ प्रारंभ हो रिहा है इह वी शाम दा ही राग है। कई वारी बहुत सारे शब्द इदां दे वी असीं सरवण करदे हां जिहड़े भावें कि शाम दा राग है। 3 तों 6 बजे वाला जिहड़ा पहर आउंदा है शाम दा, जिवें कि हुण लंघ गया पहर, हुण श्री राग दा पहर चल रिहा 6 तों 9 वाला। जिहड़ा 3 तों 6 बजे तक दा पहर आउंदा है, 3 घंटे दा इक पहर हुंदा है गुरमुखो, 24 मिंटां दी इक घड़ी हुंदी है। सो इसे तरह ही जिहड़ा 3 बजे तों लै के 6 बजे वाला पहर आउंदा है उदों राग माझ गायन कीता जांदा। सो इस तरह दे नाल जिहड़े शास्त्री संगीत दे कुछ निजम वखरे ने पर गुरमत संगीत दे निजम कुछ वखरे ने। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो जदों तुसीं कीर्तन सरवण करदे हो भावें कि अजकल तां उह जिहा कोई सुभा नहीं गुरमुख प्यारियां दा रिहा, पहलां रागां दे विच शब्द गाउण दी बड़ी तरतीब हुंदी सी। जिस समें दा राग सी, जिस शब्द दा जिहड़ा राग सी, उह उसे राग प्रकरण दे विच ही गाया जांदा सी। उसनूं कहिंदे सी निर्धारित राग दे मुताबक निर्धारित समें दे विच कीर्तन हुंदा है। सो इस करके सच्चे पातशाह जी ने सानूं रागां दी रागणियां दी बख्शिश कीती है। जरूर बर जरूर यह कोशिश करनी चाहीदी है जिहड़े गुरमुख प्यारे कीर्तन करन दा शौक रखदे ने जां सिखण दा शौक रखदे ने, भावें कि बंदशां गाओ जिन्ने मर्जी प्रेम दे नाल सच्चे पातशाह जी दी बाणी दा कीर्तन कीता जा सकदा है, पर राग विद्या नूं जरूर तरजीह देनी चाहीदी। सो हुण इत्थे राग श्री राग दी समाप्ति होई है, अगे राग माझ प्रारंभ हो रहा है। हुण 3 तों जिहड़ा 6 बजे वाला पहर हुंदा है उदों राग माझ दा समा इह गुरमत संगीत मुताबक निश्चित कीता होया।
2: इक बेनती हांजी, इक बेनती इत्थे ही कर दीए। श्री राग संपूर्ण होया है, हर राग दे विच गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ी तरतीब रखी है ना बाणी दी, पहला गुरु साहिब दे शब्द, गुरु नानक देव साहिब महाराज अगर उस राग दे विच तीजे पातशाह दे शब्द ने उहनां दी वारी आउंदी है चौथे पंजवें दी। सो इसे तरह उस राग विच बाद विच दसम पातशाह ने दर्ज कीते ने 9वें पातशाह दे शब्द, उहनां दी वारी आउंदी है। उस तों बाद फिर अष्टपदियां जे उस राग विच हन किसे भी गुरु साहिबान दीआं उसे पहले तीजे जां पंजवें पातशाह दी उसे तरतीब अनुसार दर्ज होईयां ने। फिर शंत हन उह दर्ज हुंदे ने जां होर बाणी कोई उह भी दर्ज हुंदी है। उस तों बाद फिर भगत बाणी दी वारी आउंदी है अखीर विच 12 किवें करना वार च है उस वार राग विच, फिर वार ते उह तों बाद भगत बाणी अखीर विच है। फिर भगत बाणी नूं भी तरतीब दित्ती है वी पहलां भगत कबीर जी दा स्थान रखिआ हमेशा, फिर बाकी भगतां दी तरतीब उस हिसाब नाल बनाई गई है, इह वी ध्यान विच रख लैणी। हांजी,

मैं हर मन पाया वडभागी हर नाम ते आया गुर पूरै हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चलै जियो मैं हर हर खर्च लया बन पलै मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चलै गुर पूरै हर नाम दड़ाया हर नेह चल हर धन पलै जियो हर हर सज्जन।

जियो सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई हर जियो कृपा करहौ गुर मिलहौ जन नानक हर धन पल्लै जियो माज महला चौथा मद सू

हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत संगत हर गुण गाए जग भौ जुलत उतर तरिए जियो आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरिय जियो मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने

संत हरजन संत मिलहो मेरे भाई, मेरा हार प्रभ दसहो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरा मन भाणी, हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, बडभागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै, बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरिजै जियो, मैं आए मिलहौ जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन धारे, गुरमत नाम मीठा मन भाया,

दर्शन पेखत मन आघावै, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावै। भुख व्यापै भुख व्यापै बहु बिदतावै, सिमरत नाम सदा सुहेला। जिस देवै दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जीए समाली तां सब दुख लथा। चिंता रोग गई हो पीड़ा, आप करे प्रतिपाला जियो। बारक वांगी हो सब किछ मंगा, बारक वांगी हो सब किछ मंगा।

गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथाह बेअंत सुवामी सिमर सिमर हौ जीवा जियो दुख भंजन निदान अमूले निर्भौ निर्वैर अथाह अतोले अकाल मूर्त अजूनी संभौ मन

तुम पुरख बिधाते तुम जेवड़ अवर न सूरा जियो रेन संतन की तुम दाते तुम पुरख बिधाते तुध जेवड़ अवर न सूरा जियो रेन संतन की मेरा मुख लागी दुरमत बिनसी कुबुद्ध अभागी सा

मन कुरबाने जिन तू जाता जो तुद मन भाने तिन कै संग सदा सुख पाया हार रस नानक त्रिपति

लाख कोट खुशिया रंग रावै, लाख कोट खुशिया रंग रावै, जो गुर लागा पाई जियो, दर्शन दर्शन पेखत भय पुनीता, सगल उधारे भाई मीता, अगम अगोचर स्वामी अपना, गुर कृपा ते सच त्याई जियो, जा कौ खोज है सर्ब उपाय, वडभागी दर्शन को विरला पाए, ऊच अपार अगोचर थाना, ओह महल गुरु देखाई जियो, गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुकत भया जिस हृदय वसेरा, गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक

0: गुर प्रसाद मन धारो तुमरी कृपा ते होए प्रगासा सर्ब मया प्रतिपाला जियो सत सत सत प्रभ सोई सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे देख नानक भय निहाला जियो।
1: जिहड़ा इत्थे पाठ आया ना चलत तुम्हारे सुखमनी साहिब जी दी बाणी विच भी यह पाठ हुंदा है जदों संगती रूप विच सुखमनी साहिब जी दे जाप हुंदे ने उदो कई वारी सुनण नूं मिलिया है कई पाठ इत्थे फिर चलित करदे ने। सो भावे के लल्ले नूं सिहारी है पर इहदा उचारण इत्थे चलत ही करना है। हांजी
0: माज महला पंजवा हुक्मी वरसन लागे मेहा साजन संत मिल नाम जपेहा सीतल सांत सहज सुख पाया ठाट पाई प्रभ आपे जियो सब किछ बहुतो बहुत उपाया कर कृपा प्रभ सगल रजाया दात करहो मेरे दातारा दात करहो मेरे दातारा जी अजंत सब त्रापे जियो सच्चा साहिब सच्ची नाई गुर प्रसाद तिस सदा त्याई जन्म मरण पै घाटे मोहा बिनसे सो

0: सदा कृपाला ठाड पाई करतारे जियो अपने जी जंत प्रतिपारे ज्यो बारक माता समारे ज्यो बारक माता समारे दुख पंजन सुख सागर
1: संमारे
0: ज्यो बारक माता समारे दुख पंजन सुख सागर स्वामी दुख पंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो जल थल पूर रहया मेहरबाना साध बलिहारी साध बलिहार जाइय कुरबाना रैन दिनस तिस सदा त्याई जे खिन मह सगल उधारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजवा जिथे नाम जपिया प्रभ प्यारे से असथल सो

0: खोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो तेरी शरण मेरे दीन दयाला।
1: ये पाठ आया दुर्लभ दे खोई अज्ञानी जड़ ये राड़े नू थोड़ा जिहा भारा बोलना जड़ ते इसे तरह उपाड़ी ये भी राड़ा भारा करके बोलना जड़ अपनी आप उपाड़ी जी
0: दुर्लभ
2: एक पहला पंक्ति आई है साकत संग वे कर्म कमाहे वे वखरा करके कर्म पाठ करना विक्रम पाठ नहीं करना जा विकर्म पाठ नहीं करना वे कर्म थोड़ा वावे नु सिहारी वखरी करके वे कर्म कमाई क्यों पाठ होना।
0: दुर्लभ देह खोई अज्ञानी जड़ अपनी

गुण गावै राखहो सरम असाड़ी जियो माज महला पंजवा चरण ठाकुर के हृदय समाणे चरण ठाकुर के हृदय समाणे काल कलेश सब दूर पै आणे शांत सुख सहज धुन उपजी साधु संग निवासा जियो लागी प्रीत ना टूटै मूले हर अंतर बाहर रहया भर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जमकी फासा जियो अमृत वरखै अनहद बाणी मन तन अंतर शांत समाणी त्रिपत अघाए

थापे तुद बिन अवरना कोई करते मैं धर ओट तुम्हारी जियो रसना जप जप जीवै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन ही सुख पाया सो जन्म न जुवै हारी जियो नाम अवखद जिन जन तेरा पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावहो दिन राती हर कीर्तन गावहो दिन राती सफल एहा है कारी जियो दृष्ट धार अपना दास सुवारिया घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक सविण होर दू

0: चित लाए, होमे मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया, हौ वारी जियो वारी, सतगुर कै बलिहारणिया, गुरमती परगास हुआ जी अन दिन,
1: जीत विश्राम,
0: गुरमती परगास हुआ जी अन दिन, हर गुण गावणिया रहाओ, तन मन खोजे ता नाओ पाए, धावत राखै ठाक रहाए, गुर की बाणी अन दिन गावै, सहजे भगत करावणिया, इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिलै ता विखा, नौ दरवाजे दसवै मुक्ता, अनहद शब्द वजावणिया, सच्चा साहिब सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन वसाई, अन दिन सदा रहै रंग राता, दर सच्चै सोजी पावणिया, पाप पुन की सार ना जानी, दूजै लागी भरम भुलाणी, अज्ञानी अंधा मग ना जाणै, फिर आवण जावणिया, गुर सेवा ते सदा सुख पाया, होमै मेरा ठाक रहाया, गुर साखी मिटिया अंधियारा, बज्जर कपाट खुलावणिया, होमै मार मन वसाया, गुर चरणी सदा चित लाया, गुर किरपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम ध्यावणिया, जीवन मरना सब तुदै ताई, जीवन मरना सब तुदै ताई, जिस बखसे

कर्म बिधाते गुर सेवा ते जुग चारे जाते जिसनो आप दे वडियाई हर कै नाम समावणिया माया मोहे हर चेतै नाही जामपुर बद्दा दुख सहाही अन्ना बोला किछ नदर ना आवै मन मुख पाप बचावणिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरै मन पाए सतगुर सेवन सदा सुख दाता सब इच्छा आप पुजावणिया हर जियो तेरी सदा सरणाई हर जियो तेरी सदा सरणाई आपे बखस आपे बखसहे दे वडियाई जम काल तिस नेड़ ना आवै जो हर हर नाम ध्यावणिया अन दिन राते जो हर पाए मेरा प्रभ मेले मेल मिलाए सदा सदा सच्चे तेरी सरणाई तू आपे सच बुझावणिया जिन सच जाता से सच समाणे हर गुण गावह सच वखाणे नानक नाम रते बैरागी निज घर ताड़ी लावणिया माज महला तीजा सबद मरै सो मुआ जापै काल ना चापै दुख ना संतापै ज्योति विच मिल ज्योत समाणी सुन मन सच समावणिया हौ वारी जियो वारी हर कै नाए सोभा पावणिया सतगुर सेव सच चित लाया गुरमती सहज

दिन राती बिन पिर बहो दुख पावणिया देही जात ना आगै जाए जिथै लेखा मंगिया तिथै छुटै सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते एथै ओथै नाम समावणिया भै पाए सीगार बनाए गुर प्रसादी महल घर पाए अन दिन सदा रवै दिन राती मजीठै रंग बनावणिया सबना पिर वसै सदा नाले सबना पिर वसै सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मिलावणिया माया मोहे इहो जग सूता नाम माया मोहे इहो जग सूता नाम विसार अंत विगुता जिस ते सुता सो जागाए गुरमत सो जी पावणिया अपयो पिया सो भरम गवाए।

0: न रज्जा कबहू सच्चे नावै की भुख सच्चे नावै की भुख लावणिया
1: लाम के दुलावा सच्चा
0: सच लाम
1: इत्थे दुलावा तुनसा लावे न रज्जा कबहू सच्चे नावै की भुख लावणिया
0: अवर न बीया गुर प्रसादी अमृत पिया गोर कै सब

हर गुण अनदिन गावणिया हौ तेरा तू ठाकुर मेरा शब्द वड्याई देवणिया रहाओ वेरा वखत सब सुहाया जित सच्चा मेरे मन पाया सच्चे सेव है सच वड्याई गुर किरपा ते सच पावणिया भाओ भोजन सतगुर तुठै पाए अन रस चूकै हर रस मन वसाए सच संतोख सहज सुख बाणी पूरे गुर ते पावणिया सतगुर ना सेव है मूर्ख अंध गवा।

नाम अधारे गुरमुख जोर करे क्या तिसनो आपे खाप दुख पावणिया मनमुख अंधे सुद ना काई आत्म घाती है जगत का साई आत्म घाती है जगत कसाई निंदा कर कर बहु भार उठावै बिन मजूरी भार पहुंचावणिया एहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली सदा संभाले को ना ही खाली जेही वासना पाए तेही जेही वासना पाए तेही वरतै जेही वासना पाए तेही वरतै वासु वास जनावणिया मनमुख रोगी है संसारा सुखदाता विसरिया अगम अपारा दुखिए नित फिर है बिल लादे बिन गुर सांत ना पावणिया जिन कीते

0: अमृत बाणी मानव सावणया, अमृत बाणी मानव साए, अमृत नाम त्यावणया रहाओ।
1: जी अमृत बोल लिए फिर थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अमृत
0: अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम त्यावणया रहाओ। अमृत बोलै सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा नैणी। अमृत कथा कहै सदा दिन राती, अवरा आख सुनावणया। अमृत रंग रत्ता लिवलाए, अमृत गुर प्रसादी पाए। अमृत रसना बोलै दिन राती, मन तन अमृत पी आवणया। सो किछ करै जो चित ना होई, तिसदा हुकम मेट सकै ना कोई। तिसदा हुकम मेट ना सकै कोई, हुकमे वरतै अमृत बाणी। हुकमे अमृत पी आवणया, अजब काम करते हर केरे। एहो मन भूला जांदा फेरे, अमृत बाणी स्यों चित लाए, अमृत शब्द वजावणे।

अमृत वरसै सहज सुभाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए, अमृत पी सदा त्रिपतासे, कर कृपा त्रिसना बुझावणिया, हो वारी जियो वारी, गुरमुख अमृत पी आवणिया, रसना रस चाख सदा रह रंग राती, रसना रस चाख सदा रह रंग राती, सहजे हर गुण गावणिया रहाओ, गुर प्रसादी सहज को पाए, दुबिदा मारे इकस स्यो लिव लाए, नदर करे ता हर गुण गावै, नदरी सच समावणिया, सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसै थोड़ी किसै है कनेरी, तुझ ते बाहर किछ ना होवै, गुरमुख सोजी पावणिया, गुरमुख तत है बीचारा, अमृत भरे तेरे भंडारा, बिन सतगुर सेवे कोई ना पावै, गुर किरपा ते पावणिया, सतगुर सेवै सो जन सो है, सतगुर सेवै सो जन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोहै, अमृत मन तन बाणी रत्ता, अमृत सहज सुनावणिया, मन मुख भूला।

गुर प्रसादी सहज लिवलाए, पूरन पूर रहया सब आपे, गुरमत नदरी आवणया, आपे आप निरंजन सोई, जिन सिरजी तिन आपे गोई, नानक नाम संभाल सदा तू, सहजे सच समावणया, माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाए, सदा सच सेव है सहज सुभाए, सच्चा शब्द

ग्रीवनवाज पढ़ी सुनी बाणी विचारा कथा कीर्तन दा भाव दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा कारोबारां विच बरकतां पौणियां।

एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चट्टी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर सहांद

हे ग्रीवनवाज दातार पातशाह जी, आप जी के हजूर अरदास है जी। दीवान दी संपूर्णता उपरंत आप जी ने पावन श्री मुखवाक बख्शिश की।

0: गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ ए हो, नानक चाओ ए हो ना,
1: श्री गुरु गोविंद सिंह जी दे मन नूं पावे,
2: बोले सोने हाल
1: खुशियां दे अजगारे की जावे ने हलो जावे, धन धन बाबा दीप सिंह दे मन नूं पावे,
2: बले फोन हार
1: जगारे के जावे ने हलो जावे, धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी दे मन नूं पावे,
2: बोले सोन हार गज के अजगारे की ये ने हलो जावे, धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी दे मन नूं पावे,
3: बोले सोनिहाल
1: गटके दुकान ने हालो जावे, तान तान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तुहानू पावे,
2: बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल,
1: बोले सोनिहाल,
2: बोले सोनिहाल,
1: बोले सोनिहाल,
2: बोले सोनिहाल,
1: बोले सोनिहाल,
2: गज के जिकरा भी अपने हलो जावे, तन तन श्री गुरु गोविंद मनु फदाए पावे,
0: देग तेग देग तेग, पंथ की राज करेगा चूल ते निशान रहे, चूल ते निशान रहे, लागते दीवान रहे, लागते दीवान रहे, बोले सो निहाल सात, बोले सो निहाल सात, श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

देह दात करे दातार फेर के अग्गै रखिया जित दिसै दरबार मुहाओ के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार।

मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहि जाय कोट इंदर इंदरान साहे साहान गनिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रिन कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग प्रयात छंद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सो एकाय नमस्तंग अनेकाय नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग परपोगे नमस्तंग सोजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाशरे नमस्तंग निराशरे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसंग अदेसे नमस्तंग अपेसे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्त देवाय नमस्तंग अपेवाय नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सोबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौने नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अबरने नमस्तंग अमरने नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व तंदे नमोस्त अबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्बाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सोहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद त्वय प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजे है अजाद है अजन्म है अबरण है अपूत है अपरण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंद है अबंद है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निरलंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अक्रम है अप्रम है अजीत है अपीत है अबाह है अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है पुजंग प्रयात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति सरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी सरूपे नमो राज राजेश वरंग परम रूपे
नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदि अपेदि अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ते निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्यं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रे साल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा होय फैलो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हुनह जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जान ही जेह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब बिसव रचयो स्वयं भव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक
सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जान ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवही बहु चित मद भार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहु साहान साहु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अबा अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा भर नाडय अन दंड बाडय चाचरी छंद त्वय प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्कर करता चतर चक्कर हरता चतर चक्कर दाने चतर चक्कर जाने चतर चक्कर वर्ती चतर चक्कर भरती चतर चक्कर पाले चतर चक्कर काले चतर चक्कर पासे चतर चक्कर वासे चतर चक्कर माने आए चतर चक्कर दाने आए चाचरी छंद न सत्रै न मित्रै न भरमंग न पितरै न करमंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रै न मित्रै परे है पवित्रै प्रिथिसै अधिसै अदृश्य अकृसै भगवती छंद त्वय प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत वरण के विभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वरण के सर्वा अपरण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बेहीन के एकै अधीन के रोजी रिजाकै रिहीमै रिहाकै के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफबुल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांत है के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वतर माने आए के सर्वतर दाने आए के सर्वतर गौना के सर्वतर पौना के सर्वतर देसा के सर्वतर पेसा के सर्वतर राजाय के सर्वतर साजाय के सर्वतर दीनाय के सर्वतर लीनाय के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेसाय के सर्वतर कालाय के सर्वतर पालाय के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजय के सर्वतर राजय के सर्वतर सुखय के सर्वतर पोखय के सर्वतर तराणय के सर्वतर प्राणय के सर्वतर देसय के सर्वतर पेसय के सर्वतर मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वतर जाप्याय के सर्वतर थाप्याय के सर्वतर भान्याय के सर्वतर मान्याय के सर्वतर इंद्रय के सर्वतर चंद्रय के सर्वंग कलिमय के परमंग फिहिमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनुल वजू हैं तमामुल रुजू हैं हमेशुल सलामय सलीखत मुदामय गनीमुल सिकस्तय गरीबुल परस्तय बिलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तमामै रजूअल निदानै हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं
समस्तुल सलाम है, सदैवल अकाम है, निर्बाद स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओअंग आदुरूपे अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्ब भागे सो सर्बा अनुरागय त्रिभुगत स्वरूप है, अछिज है, अछूत है, के नरकंग परनास है, पृथ्वील परवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैवं सदा है, विभुगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुगत प्रभा है, सदैवं सदा है, विभुगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुगत प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, चाचरी छांद अभंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अदूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगंभ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छांद त्वय प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांद है के राज कर हिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बेहस्तुल निवास है के सर्बुल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलं प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो बेभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मत पार छंद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अनचिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकै सदाहु ओ अंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन तुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म
अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद। करुणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है काल कारण है सर्व उबारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वंपर है सर्वंकर है सर्व पास्या है सर्वनास्या है करुणाकर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पार ते पार है करुणाकार है अजपा जाप है अथपा थाप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणाकृत है अकृता कृत है तरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है विश्वंपर है करुणालय है निरपनायक है सर्व पायक है भव भंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकार है हर्ता हार है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बास है जास के जास है पुजंग पर्यात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संगताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छांदन मस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं परनासी सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरं परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चत्तर चक्करवर्ती चत्तर चक्कर भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वय प्रसाद सुवैये सरावग शुद्ध समूह सिदान के देख पिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत शीस ना जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे
भूत भविख भवान के भूपत कौन गणे नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत काओ अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दाम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत तार सबै सो बिचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पाल ही पाल मैं सब थाप थपेंगे पुन परतापन बाढ़ जायत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरादप जौन तेरे लोक को राज करेंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर ना देह तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरो लिये सात समुन्दरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बोतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है पात साही दसवी कब्यो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिखे सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन का आज संघरियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवरना ते आऊं जो बार चाहऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिखे हमारे तारिया है चुन चुन सत्तर हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझै उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हुजो सदा हमारे पछा श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा राख ले हो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप धरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो
आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकरख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंब आदि अनिल अनादि असंभ ता का मूड़ उचारत भेदा जा को भेवना पावत बेदा ता का ओ कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भिव आप आपुनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहतेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो संकर एकैठा सिगरे श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अबरछा मेरी तुम करो सिखे उबार असिखे संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रान काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै न कोई एक बार जिन तुमै संभारा काल पास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारु कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुभराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छै करता श्री असतुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख ना तिसै व्यापत कोई अड़िल सुनै गोंग जो याहे सो रसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै हो जो या की एक बार चाओ पई को कहै चाओ पई संबत सत्रह सहस पनिजै अर्ध सहस फुन तीन कहिजै भाद्रव सुदी अष्टमी रवि वारा तीरस तुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक ना जानेओ श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहो सब तोहे बखाने हो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार
बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया। शब्दो ता गाव हो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखहु बिन सतगुर मुक्त ना पाए।

पाए, हर रस पाए पल्लै पियै हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए, कहै नानक होर अन रस सब विसरे जा।

नौ दुवारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी, इकना दसवा द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव नाव निध, तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो, गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहिला साचा घर, गावहो गावहो ता सोहिला घर साचा। जिथै सदा सच त्याव हे, सचो त्यावह जा तुद भावह। गुरमुख जिना बुझाव हे, एहो सच सबना का खसम है। जिस बक्से सो जन पाव हे, कह नानक सच सोहेला सचै घर गाव हे। आनंद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वे सूरे।

सो कहो टल गुर सेविया अहनेस सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सच्चे पातिसाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातिसाह सिर साहां दैसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम वाहे गुरु साहिब जी।

अंतर्गत होके सत्संग जी नाम नु सुनना करना जियो नाव चक्कर ते सुन सकते हो जिथे बैली बटना हिरदा चक्कर जिथे दिल दी धड़कन उते सुन सकते हो कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आउंदी है उते सुन सकते हो जिन्हां गुरमुखां नू शब्द सुनदे है उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जियो जिन्हां गुरमुखां नू इन्हां चक्करां ते ध्यान नहीं लगदा नाम नहीं सुनदा विश्वासां नाल सिमरन कर सकदे अंतर्गत होके सवास अंदर नू जांदा वाहे फील करना सवास वार नू आउंदा गुरु फील करना इस तरह आपां सास ग्रास अंतर्गत होके सिमरन करी जाना जियो दो तीन मिनट वक्त आपां ने फिर रसना नाल जपना जियो नेत्र बंद रखने हैं।

अंगीकार ओह करे तेरा सबना गल्ला समरथ स्वामी कह नानक मन मेरे साचे साहिब करता तेरा सब किश है सदा सिफत सलाहा तेरी नाम जिनकै मन वसिया कह नानक सच्चे साहिब साचा नाम मेरा साच नाम अवधार मेरा कर सांत सुख बन आए वसिया सदा कुर्बान कीता गुर विठो कह नानक सुन हो संत हो साचा नाम मेरा वाजे पंच शब्द कार सुपागे शब्द वाजे पंच दूत तुद वास कीते तुर कारम पाया तुद जिन कौ कह नानक तह सुख हुआ आनंद सुनो बड़ भागी हो पार भ्रम प्रभ पाया दुख रोग संताप उतरे संत साजन पहे सरसे सुनते पुनीत कहते पवित बिनवंत नानक गुर चरण लागे सुनते पुनीत कहते पवित बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

दर्शन परसया गुरु कै जनम मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरस हो।

आई। गुरमुख होवे सो अमृत पीवे, सहजे साच समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े।

शीस च पहिंदा रेता तवी दय पूर्व राज गए, शीस च पहिंदा रेता तवी दे ओ पूर्व राज गए।

से ही दारू लोक में नी करते चुक प्रणाम शीतानू लोग में नी करते चुक प्रणाम।

तिल वड़ियाई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड़ियाईया तुद

चारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा आस

अंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुत बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवह जो सेवह तुत जी, जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुत जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त पए, जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी, तिनका भौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवरना कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करहै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब पाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई,

अले मन एक ना चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा।

कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम का वहो आप हाथ दै मोहे बचाव हो।

सकल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो, घट

दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहरि हो, ताके ताप तनक मह हरि हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छा

तुद जिन को से नाम हर कह लागे, कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, आनंद सुन।

दास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है।

बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी, बोलो जी।

रिद्ध सिद्ध सब भगता चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई। मन मुखा नो प्रतीत न आवी, अंतर लोभ सुआओ।

है समाणी गुर कै शब्द पछाता अचिंत कम कर है प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा। गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सवारण हारा उना की रीस करे सो विगुच्चै जिन हर प्रभ है रखवारा। बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख भौक मुए बिल लाई आवह जावह ठौर ना पावह दुख मह दुख समाई। गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म न छोड़ै जे अनेक कर्म करै अधिकाई। वेद पढ़ै तै वाद वखाणै बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज छूट है गुर सरनाई। जिन हर मन वसिया से दर साचे।